0: जंगल है आधी रात है।
1: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा हूं?

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली,
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: अरे नहीं

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता. और एक दिन चर्च में

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

0: की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा।
1: सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात,
0: ढोल मंजीरे बजने लगे, पड़ी डफली पर था

कसम, तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, पट्टा खे की लड़ी है, आंखों में गुस्सा है।